0: नमस्कार, मैं अब से मिल जाऊँ गोमवाई अशेष मिश्रा।
1: Just a minute.
0: Just a minute.